0: कोई ना देख रहा। चल ठीक है सुनाओ।
1: Something.
0: Put me over there, single 20, at least 45 and 31, 34.